0: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tirefors.com.au।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
3: जदो दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
4: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654 92।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानो उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet ले गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford.
2: White Hill Studios.

0: ਸਾਰਾ ਚਲਾਈ ਨੂੰ।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत, एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: पुलिस गूस बस के लिए बाएं मुड़े। सांस की जांच उपकरणों वाली पुलिस मोटरसाइकिलों के लिए दाएं मुड़े। जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
5: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
6: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
8: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042 ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाओ देने उन्हां दे सपने आदा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक आज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555।
1: रेडियो हाँ जी 1674 प्रोग्राम हाँ जी मेलबर्न इंश्योरेंस करवानी है तो गिद्दा इंश्योरेंस वाले दे कोलों करवा सकते हो भाई तुसी लै सकते हो कोट ऑलरेडी कितने चल भी रही है इंश्योरेंस तो फिर इन्हां दे नाल भी तुसी गलबात करके तो मैच कर सकते हो तो जे तुसी फर्नीचर लैन का सोच रहे हो तो स्लीप एंड रिलैक्स वाले को लै सकते हो तरुगनीना वाली साइड पर तो एपिंग वाली साइड पर भी इन्हां दा स्टोर आ उत्थे भी तुसी कर सकते हो इन्हां दे नाल संपर्क तो कोई गद्दे ही नहीं फर्नीचर भी हुण इन्हां को लै सकते हो वह भी इन्हां दा दावा आ कि बाकियां दे नालों वाहवा ही सस्ता तो प्रोग्राम दे विच इकरी फिर स्वागत तुहाडा मेरे नाल डॉक्टर प्रीतेंद्र करवा
2: जी हुणे हुणे जुड़े स्रोतियां नूं जी इहनूं आखदे आ प्रोग्राम अपनी राहे चल रहा तो अज गल्लां बातां हो रही ने काम कारोबार नौकरी नाल संबंधित कि यह काम कारोबार जां नौकरी जिहड़ी सी इहदा तसव्वुर तुसीं पहली उमरे कीता सी नौकरी ने तुहानूं चुणिया जां तुसीं नौकरी चुनी जां किस किस्म दी तुसीं पढ़ाई लिखाई कीती ते की मुड़ के उह काम आई उस किस्म दे किते चों जां कुछ वक्खरा राह चुणिया जां पी आर लई वक्खरा राह चुणना पै गया ते मुड़ के उहनूं ही राह बना लिया सो इस किस्म दीआं गल्लां आपो अपनी जिंदगी च सब नाल होईआं ने ते उस सिलसिले च सारे आपो अपनी सांझ पा रहे आ असीं भी थोड़ी बहुत पाई आ ते नाल तुहानूं भी बेनती करदे आ अगर कोई तुहाडी कहानी भी आ वैसे तो बहुतियां कहानियां मिलदियां जुलदियां ने पर उन्हां चों कुछ ना कुछ सिखिया जा सकदा एक दूजे नूं दस्या जा सकदा
1: बिल्कुल सो इहनूं आपां होर थोड़ा जिहा जे आसान कर दिए कईयों के लिए होर समझना आसान हो जूगा कई बार तो ट्यूनिंग ताड़ी ना रली हुंदी आ ते बंदा इधरों मतलब गल शुरू करता तो अगला उस वेले क्लिक कर जांदा नाल ताड़े उस वेले कांटी पै जांदी आ कई बार कई चीज़ां जिहड़ियां ने वो अलग अलग फ्रीकुएंसी दे तुरियां फिरदियां ने ते आपां उहनूं होर थोड़ा जिहा किसे वेले उहदे विच सानूं करीब जाणा पैंदा एक पक्ष का होर भी आप वेखते हैं कि जदों आपां इस चीज़ नूं आपां समझना होवे तो मान लो आप इस टाइम के उत्ते जो भी कर रहे हैं मान लो मैं रेडियो ते कम कर रहा ते की मतलब इस दे पिछे कोई खोलन तो पहला कोई दो चार साल की पढ़ाई जां व्योतबंदी जां उस पासे नू कोई स्ट्रगल कोई इनफॉर्मेशन इकट्ठी करनी की वो शामिल सी जां फिर इस तो भी वधेरे कोई लंबा चौड़ा सफ़र मतलब तुहाडा एक हुंदा ना भी बड़े चिर दा सुपना ही भी भाई असीं पायलट बनना तो फिर तुसीं पायलट की पढ़ाई की फिर तुसीं ट्रेनिंग तो फिर हौली हौली हुण तुसीं अज पायलट बन गए यस मतलब आप चुन के अपना किता आप इस पासे नूं आए जां फिर तुसीं मान लो टीचर बनना तुसीं मान लो जिदा डॉक्टर तो डॉक्टर ने मतलब उस पढ़ाई नूं कीता तो उन्हों हुण कई वेखो इहदे विच इदां भी हुंदा वा कई डॉक्टर हुण कल ही मैं किसी दे नाल मेरी मुलाकात हुई वो कहिंदे भी साडे बच्चे ने डॉक्टरी की सर्टिफिकेट लिया के सानू फड़ाता भी आलो ता सुपना ही आलो आई एम डॉक्टर नो मेरे ना अगे डॉक्टर लग गया हूँ मैं आ नहीं करना
2: मैं जाना मेरा काम
1: मैं आ करना वा है ना सो पढ़ाई करके भी कई बारी तुसी अलग डायरेक्शन दे विच जा रहे होंदे हो एक हुंदा भी जिदा तुसी जे मैं अगे आप गल की इतने आके साडा हुण कोई बहुतियां दा ये नहीं होगा भी मैं क्लीनिक दे कारोबार दे विच मैं पूरी व्योतबंदी दे नाल पढ़ाई पढ़ुई करके फिर मैं जां फिर पेंटर मैं बनया सारी पूरी व्योतबंदी करके प्रोपर मैं इंडिया तो ही सोच लिया ही भी मैं हाँ ट्रैकिंग च जरूर कई इंडिया तो ही सोच के आउंदे आ कईयां दा मैं सुनिया भी उहनां दा पूरा हुंदा वा भी असीं जाके ड्राइवर ही बनना पर फिर भी बहुत सारे इत्थे प्रोफेशन इदां दे ने जिन्हां दे विच आपां सिर्फ पै गए आ गए हुण मैं जे अपना दसां तो मैं जिथों काम शुरू हुंदा वा आ के सिर्फ इन्ना ही भी यार खर्चा पानी निकलता जाए तो इहो ही कह के रख्या ही भी जो भी भाई मिलेगा दोई चोई थाई जिन्हां जिन्हां नूं मैं कहा भी जो भी मिलेगा दस दिओ वह चाहे कारां धोण दा होवे चाहे अगले दिन क्लीनिंग दा मिल गया वह भी कर लिया चाहे इंसुलेशन भरन दा होवे वह भी तुसीं कर लिया पेंटर नूं बंदे दी लोड ही नालो रंग रुंग कुची फड़ाउण दे लई उहदे नाल भी चले गए वह हुंदा वा भी तुसीं गो विद फ्लो जो तुहानूं मिलिया तुसीं हौली हौली हौली हौली तो जिथे तुहाडा नौ अड़ गया पैसे वधिया जां मान लो एक शिफ्ट तो सीधी हफ्ते की कन्वर्ट होगी बाकी तुसीं छड्ड के तो तुसीं इधर शिफ्ट हो जाते हो कई बार इदां भी हुंदा ना भी सानूं दो दो नौकरियां आपां कर रहे हुंदे आ सवेरे शाम जां दो दिन जां पंज दिन कितें होर वीकेंड दे उत्ते कुछ होर उस तों बाद जदों एक पासे सानूं वध काम मिलना शुरू हो जांदा तो आपां उहनां दोवां दे विचों एक छड्डदे आ एक आपां पिक करदे आ सो उत्थे भी स्टिल मैं कहूँगा भी फिर साडी अपनी चॉइस आ गई उत्थे फिर अधवृत्ति जी चॉइस साडी आ गई फिर वो किसी वजह करके भी हो सकती पैसे करके भी तुहाडे घर दे लागे भी कम हो सकदा जां किसे पर एक हुंदा उस तों पहलां वाला भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਲੈ ਗਈ ਆਹ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹੋਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
2: ਸਕੂਨ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮਨੈਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਦੋਂ ਓਂਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜੋਬ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
1: ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ,
2: ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੂਹੇ ਮਾਰਨੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਖੇਡਾਂ, ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਣ ਵਾਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: डे ऑफ स्लेवरी।

0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने हैं डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने, एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
1: क्या आप एक ड्रिंक के लिए मना करना पसंद करेंगे या फिर ये कहना कि नहीं मैंने अपना लाइसेंस गवा दिया है?
2: वैसे मैं ज्यादा शराब पीने वालों में से नहीं हूँ। हमारे काम पर एक सेलिब्रेशन था और मुझे लगा कि मैं ड्रिंक लेने से मना नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैंने तो कानूनी सीमा के भीतर ही पी है, लेकिन मुझे 0.05% से ज्यादा ब्लड अल्कोहल के साथ ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया। अब मैं ड्राइव करके अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी मम्मी को कहना पड़ा कि मैं उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। जो लोग मुझ पर निर्भर हैं, उन्हें ना कहना सबसे खराब सजा है। काश इस सब की बजाय मैंने उस दिन ड्रिंक लेने से मना कर दिया होता।
1: जिम्मेदारी से रहें, अगर आपने शराब पी है तो ड्राइव नहीं करें। TAC से एक संदेश।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तों ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
4: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
5: की होया,
4: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
5: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
4: या 90-77-97-33
5: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
4: याद रखो 9077-9733
5: VY Immigration and Education Consultant,
4: हर कदम तुहाडे नाल।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reya hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options we available. Aao te apni navi Ford da test drive karo, business fleet lai gal karo, vehicle experts Tim Forbes ya Corey Nal, Radio Hanji re hawale nal pao, 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हां जी, हां जी, ओए

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252
1: ते। कित्थे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-77-48 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
4: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
3: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह। They have slept.

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: 10-500
1: या 90-77-93
0: या ईमेल info@vyimmigration.com.au
1: याद रखो 9077-9733
0: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तो अड्डे नाल।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
2: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हाँ जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूंगी ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। थैंक यू।
3: यह तुहाडी मर्दमशुमारी नूं पूरा करन दा समा है। मंगलवार 11 अगस्त 2026 नूं ऑस्ट्रेलिया विच हर किसे नूं गिणिया जावेगा। इस विच नागरिक, पक्के निवासी, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, अस्थाई वीजा तारक अते सैलानी शामिल हन। तुसी ऑनलाइन कागजी फॉर्म ते जां जे तुहानूं लोड पैंदी है तां मदद दे नाल हिस्सा लै सकते हो। सहायता विभिन्न भाषावां विच उपलब्ध है अते इस दी पेशकश ऑनलाइन अते फोन राही कीती जांदी है। अते याद रखो, मर्दमशुमारी दी रात नूं तुहाडे घर विच ठहरण वाले हर किसे नूं शामिल करो जिस विच बच्चे अते परौणे शामिल हन। मर्दमशुमारी ऑस्ट्रेलिया दी तस्वीर खिंचण विच मदद करदी है। इह स्कूलां, भाईचारक सेवावां, सेहत संभाल अते आवाजाई वर्गियां चीजां वास्ते योजनाबंदी बारे दसदी है। जद तुसी हिस्सा लैंदे हो तां तुसी इह यकीनी बनाउण विच मदद करदे हो कि तुहाडी भाषा, सभ्याचार अते भाईचारे दी प्रतिनिधता कीती जांदी है। 2026 दी मर्दमशुमारी हर जवाब मायने रखदा है। www.census.abs.gov.au/punjabi ते वाधू जानकारी लवो। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैनबरा द्वारा अधिकारित।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com.au।

0: चलाई नू।
1: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: लिंट नहीं चाहता है कि आपका बकाया टोल आपकी रफ्तार को धीमा करे, इसीलिए हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं, साथ ही टोल नोटिस पर लगने वाली एडमिन फीस भी हटा दी गई है ताकि भुगतान करना आपके लिए आसान हो सके। जुर्माने का जोखिम न उठाएं। आज ही लिंक्ड टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें। अधिक जानकारी के लिए देखें linked.com.au/nswtolls।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Haji 16748.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
1: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा
1: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
2: लिंट नहीं चाहता है कि आपका बकाया टोल आपकी रफ्तार को धीमा करे इसीलिए हमने NSW गवर्नमेंट के साथ मिलकर बकाया टोल प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं अब हम डाक की जगह समय रहते डिजिटल रिमाइंडर भेज रहे हैं साथ ही टोल नोटिस पर लगने वाली एडमिन फीस भी हटा दी गई है ताकि भुगतान करना आपके लिए आसान हो सके जुर्माने का जोखिम न उठाएं। आज ही लिंक्ड टैग अकाउंट खोलें और अपने बकाया टोल का जल्दी समाधान करें अधिक जानकारी के लिए देखें linked.com.au/nswtolls
0: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
0: वो आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
5: This station is now the ultimate power in the universe.
6: Radio Haji 16748.

0: ऐसी खाने सामान
1: स्प्रिंग अनियन थे।
2: अच्छा स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल
1: नहीं स्प्रिंग अनियन,
0: स्प्रिंग रोल नहीं और सीजन स्प्रिंग होंगे।
2: अच्छा सीजन, ओके ओके ओके, ओदी गल कर दे।
1: पतझड़ सावन बसंत बहार,
0: समर ऑटम विंटर स्प्रिंग।
2: ओ इतना कुछ कितों पता तानू?
1: ए तो उंगला ते आगे मेरे,
0: मैं हुन बड़े स्कूल च।
2: हां इतनी नॉलेज होगी तानू है?
0: हां जी।
2: चलो की सुनाओगे फिर? अच्छा
0: सखिए सहेलिए गुजिए पहेलिए मथे उत्ते लैना चल सूरज सजा सखिए सखेलिए गुजिए पहेलिए मथे उत्ते लैना चल सूरज सजा नवी नवेलिए चन डिगे लिए बड़े पिच छुट लब खाबा मांगेगा चाक दो बल्ले बल्ले
2: नारे नारे नारे
1: बल्ले बल्ले
2: चवा चवा
1: चक दे सीस कर
2: चलो चलो चलो चलो
0: ओके
1: मैं
2: ते मज हुंदी आ
1: मैं ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀ
2: ਅੱਛਾ ਗੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਗੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੀਪ ਸ਼ੀਪ ਕੱਢਦੀ
0: ਨਹੀਂ
2: ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੀਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ बकरी कर दी मेह
1: नहीं मेह दी स्पेलिंग गलत
2: ओके ओके गुड गुड गुड चलो की सुनाओगे फिर आज
0: स्टोरी
2: ओके
0: ऊपर पंखा चलता है फिर नीचे बेबी सोता है ते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली मूंगफली दाने नहीं तुम्हारी मम्मा नहीं मम्मा गली माउसल बिल्ली लीना
2: पंजा मामा हो गया
0: गंदा
2: ये तो ही गंदा ही करता आज ये मालूम बिल्ली दा पंजा गंदा होया ते मामा गंदा ही होना
1: नहीं गंजा गंजा
2: अच्छा गंजा
0: करो
2: बल्ले बल्ले शावा शावा ठीक है हो गया भावे गंजा हो गंदा हो आप की लेना
1: कोई गल है जी
2: एको गल ही है मामा जाने मामी जाने
0: अंकल
2: ओ सासरी काल
1: की हरा जी

0: rocking with the best, DJ Hans.
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो
3: 9070973 कॉल करो 0383857048 ते सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
4: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा
5: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
6: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेकअप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
7: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
8: यार उना दा डैंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
7: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डैंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते
9: ਨਾ

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tyreforce.com.au।
3: अटेंशन ट्रैवलर्स, The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
0: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: Bahar was dang. Brand new demo, the quality pre-owned vehicles. Trade-in at the finance options we available. Aao te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet like gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes, ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 3 saal di free service. Chetston Ford. Ready, set, Ford.
1: Mobile speed cameras ke liye baaye mude. पुलिस मोटरसाइकिल यूनिट के लिए दाएं मुड़े, जीवन के लिए खतरनाक दुर्घटना की स्थिति में सीधे आगे जाना जारी रखें।
2: आपकी छुट्टी कैसे खत्म होती है यह आप पर निर्भर है। अगर आप तेज गाड़ी चलाते हैं चाहे थोड़ा सा भी, तो यह गलत बात है। TAC की ओर से एक संदेश।
3: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा।
4: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
3: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेविटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कांटेक्ट करो। स्लीप एंड रिलैक्स, वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
5: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
6: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
5: फिर लवाइए किथों?
6: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
5: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
7: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
8: गड्डी दा ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
7: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, 11 हॉल।

0: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनेयां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
4: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार
5: एक कल्ला कपड़ा नहीं है एक कहानियां कई सदियां दी
4: स्टारिंग तरसेम जसर गीत गुराया ते योगराज सिंह

0: Attention travelers. The upgraded Air India experience is now boarding with warm Indian hospitality, gourmet meals, and over 3,000 hours of in-flight entertainment. Better non-stop with Air India.
1: सोना चाहिदा
2: भरोसा चाहिदा
1: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-536-042
3: आ रहा करण औजला दा पी पॉप कल्चर टूर ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न दा पहला शो कुछ दिनों विच ही सोल्ड आउट हो चुका है हुण दूजा शो 19 अगस्त नू रोड लेवर एरिना विच ऑस्ट्रेलिया दे होर शोज ते टिकट्स इनफॉरमेशन लई विजिट करो livenation.com.au गीता दी मशीन करण औजला पी पॉप कल्चर ऑस्ट्रेलिया टूर 2026

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिया दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433 280 252 ते 0433 280 252 ते

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश 8 Grace Way, Revan Hall.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ।

यूं लगा मेरे घर से कोई आ गया, आपका खत मेरे हाथ में है, ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। छोड़ना नहीं, दो दिन से यहां बारिशें हो रही हैं।

होने पर उसको दिया था, वो भी मैं ले आई। अब भाई कलम ढूंढेगा तो मुझे याद करेगा, तुम्हारी टूटी हुई ऐनक भी अपने साथ ले आई। सारा दिन शीशे जोड़ने की कोशिश करती रहती हूँ और तुम सामने बैठे रहती हो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: कॉल 0499-2535-45 ते।
1: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते
1: हां जी हां जी ओए हां जी
2: रेडियो
3: डूंगे दर्द जुदाइयां दे ते

मैं मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवे सचियार तौले उपर केता पार धरती होर परै होर तिस्ते पार तलै कमन जोर जी।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाका होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखन सुनन न अंत।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोय, बहुता कहिया बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

तीरे सुनियार एरन मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित ताल करिए शब्द सची टक।

आप श्री मुख वाग्पाद सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेक पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तं अकाले नमस्तं कृपाले नमस्तं अरूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेखे नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगादे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाश्रे नमस्तं निराश्रे नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अभेशे नमस्तं निर्तामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तत रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री छंतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद।

नंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो

रोगे नमस्तं स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दं अगा उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अछेति अपेदी अनाम अकाम समस्तो पराजी समस्तस्तताम तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तं निनाथे नमस्तं परमाते नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं अकाले नमस्तं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो सर्व तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं पनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुक्ता सर्वंग

कालांकार अनुभूत अंग अभावंगत में तो पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधिरसय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मक तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राजग रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहिब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकत स्वरूप है तिरमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है।

सो जुग सुदा है, सदैव स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तल सलाम है, सदैव कलाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओम आदि रूप है, अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है, अच्छे जय छूत है, कि नरकम परनाश है, पृथ्वी परवास है, निरकत परवाह है, सदैव सदा है, बेपुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, निरकत सदा है, बेपुगत परवाह है, अनुगत स्वरूप है, पर जुगत अनूप है, चाचरी छंद अभंग है, अनंग है, अभेक है, अलेख है, अभर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अधूत है, अनाश है, उदास है, अधंध है, अभंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, अनचिंत है, सुनित है, अलिख है, अधिक है, अलेख है, अभेक है, अडा है, अगा है, असंभ है, अभंग है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजात है, चारपट चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितोमिक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्तल अदीस है परंग परंग ईश है समस्तल अदीस है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमीकुल उमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन शांतो प्रसाद करना ले आर काले है कल खंडन है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है हृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानिय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सरूपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए सराव सद समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूप बली बरन्याव सीत नन जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंधकुना के पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पवेख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जब तार सब सुचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सुबा दुरन दुबा सुसाज सनह दुर

श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़ियार अवतार इसार की तार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते गजान के मान मलैया। गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया। साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया। दानव देव फिनन निशाचर पूत पवेख पवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे। सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सवै अब लोग जपेंगे। मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे। ब्रह्म हेश्वर विष्णु सचिपत अंत बसे

0: लिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो कहूं ले पायन पुत्रो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुज करियो रक्षा राख लो।

शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोग सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फू राजा है बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव आवरछा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुखद है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रच्छा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न।

0: सन्मुख सिख कोई जीव रहे गुरु नाले, गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मे समाले, आप छड सदा रहे परने गुर बिन अवर न जाने कोए। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए,
1: जे को गुर तेरे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंदिन हर।

हम सर मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं नमाणा नहीं, हम सर दीन दयाल ना तुम सर। सच्चे पातशाह जी तुहाडे वर्गा कोई दयालू कृपालू नहीं, क्योंकि आप जी ने सरवण कीता है। आपां इहदा अर्थ इत्थों शुरू कीता ना, कारण कवण अबोल, सरगुण स्वरूप च दर्शन तां होए परंतु आप जी बोलदे क्यों नहीं। फिर वह बेनती कर रहे ने, मेरे वर्गा कोई नीच नहीं नीमा नहीं, हम सर दीन मेरे वर्गा कोई गरीब नहीं, तेरे वर्गा दयालू कृपालू नहीं सच्चे पातशाह। अब पत्यार क्या कीजै, हुण मेरा केड़ा टेस्ट लै रहे हो, केड़ी मेरी परख कर रहे हो। ए भगत रविदास जी वचन उचारना

हे सच्चे पातशाह, मेरा तां मन तेरे सतनाम रूपी शब्द विच जुड़ गया। बचनी तोर मोर मन मानै, तुहाडे सतनाम रूपी बचन दे विच जुड़ गया। मोर मन मानै मेरा मन, बचनी तोर मोर मन मानै जन को पूर्ण दीजै। कृपा करो हुण मैनू पूर्ण ज्ञान ब्रह्मानंद दी बख्शिश कर दो मेरे ते। मन शब्द विच जुड़ जाना बड़ी वड्डी गल है। जिन्ना समा मन शब्द विच नहीं जुड़ता, पूर्ण पद की प्राप्ति नहीं होंदी, तुरिया अवस्था की प्राप्ति नहीं होंदी। तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय, नानक संत निर्मल भए जिन मन वसिया सोए। संसार रजगुण सतगुण तमो गुण तीन गुणा दे विच है, परंतु वाहिगुरु दे प्यारे सिमरन करके ना तिने गुणा तो उपर उठ जांदे ने, तुरिया पद की प्राप्ति कर लैंदे ने। तुरिया पद चौथी भूमिका, क्यों? क्योंकि उन्हां दा मन अकाल पुरख दे सतनाम, सत नाम तो भाव सच्चा नाम, सतनाम रूपी बचना च जुड़ जांदा है। मेरा मन तुहाडे सतनाम रूपी सिमरन रूपी बचना च जुड़ गया। जन को पूर्ण दीजै, कृपा करो मेरे ते, मैनू

0: हे सच्चे पातशाह मैनू तुहाडे दर्शन हो रहे ने परंतु तुसी बचन नहीं कर रहे। हौ बल बल जाओ रमैया कारण है, रमैया तो भाव रमया होया परमेश्वर है। उस वाहिगुरु दे दर्शन होण करके मैं तुहाडे तो बारी बारी बलिहार जाना, तन करके मन करके शरीर करके सच्चे पातशाह मैं बलिहार जाना हां तुहाडे तो, क्योंकि तुसी दर्शन देना कीते हन मैनू सरगुण स्वरूप दे विच।
1: कारण कवन अबोल।
0: ते सच्चे पातशाह हुण कारण की है, आ बोल तो भाव बोल दे क्यों नहीं, मैथों की भुल होगी, कृपा करो
1: रहाओ।
0: रहाओ दा अर्थ एक तां हुंदा है विश्राम, सारिआं नूं इह पता है। एक हुंदा नाभी, नाभी तो भाव जिवें अपनी धुनी हुंदी है ना, सारियां नाड़ां दा जिहड़ा जोड़ है ना उह धुनी च हुंदा है, कंट्रोल नाभी च। इसे तरह शब्द का जिहड़ा मोरल है, निचोड़ है, वह रहाओ दीआं पंक्तियां दे विच हुंदा, शब्द का केंद्री भाव। इस करके पहला अर्थ आपा इस पंक्ति का कीता सी, कारण कवन अबोल, तुसी बोल दे क्यों नहीं, की कारण है। तीजा रहाओ दा अर्थ है परमेश्वर सदीव काल रहण वाला, संसार चलो चली दा मेला है, राह नाम रमया होया, हाहे नू कन्ना हा, प्रगट ऊड़े नू अंकड़ ओ अंकार परमेश्वर जिहड़ा हर जगह ते रमया होया प्रगट है, उहदे विच अपने चित्त नू जोड़ना कर। रहाओ दीआं पंक्तियां दे विच केंद्री भाव हुंदा शब्द दा, सो विश्राम दे के अगे

नव घर, नव घर का की अर्थ है? नौ दरवाजे, नौ दरवाजे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। नव घर का अर्थ है नौ गोलकां रूपी, नौ गोलकां साडियां, नौ गोलकां ने नौ दरवाजे प्रगट ने दसवां गुप्त है। जिन्हें नौ गोलकां नू, नौ दरवाजियां नू विशे बकारां वल्लों रोक लिया, नौ गोलकां नू नव घर थाप, जिन्हां ने भाई ये नौ दरवाजियां नू विशे बकारां वल अखां नाल माड़ा देखना बंद कर दिता, कन्नां नाल माड़ा सुनना बंद कर दिता, ओ जीव रूप स्त्रियां नव घर थाप महल कर पहुंचो, स्वरूप रूपी उच्चे घर नूं प्राप्त कर लैंदियां ने ते तुरिया पद रूप महल प्राप्त कर लैंदियां हन। तुरिया पद रूपी महल ते स्वरूप रूपी उच्चे घर नूं प्राप्त कर लैंदियां हन। अर्थ बड़े डूंघे है खालसा जी। निज घर वास मुरारे ते उहनां दे हिरदे च परमेशर प्रगट हो जांदा अंदरों। वास मुरारे, मुर नाम दैंत सी उहदा वध कीता, हे परमेश्वर तेरा नाम फिर मुरारी मुरारे पै गया, मुर नाम दैंत दे वध करन वाले परमेश्वर जदों जीव रूप इस्त्रियां दी सुरती नौ दरवाजियां नूं साध के दसवें दरवाजे च चली जांदी है, टिक जांदी है, सुरत टिकन करके, सुरत टिकन करके तुरिया पद रूपी महल अते स्वरूप रूपी उच्चे घर दी जीव रूप स्त्रियां नूं प्राप्त प्राप्ति हो जांदी है। ते फिर अपने निज घर विच जिहड़ा परमेश्वर है ओ अंदरों प्रगट हो जांदा है, अंदरों भी ते बाहरों भी, फिर ओहदे

सब तेरी, ये जिहड़ी सृष्टि की रचना सारी रचना तेरी कीती हुई है। रचना करन तों बाद सरगुण स्वरूप संसार, सरगुण सरगुण भी तू है, निर्गुण भी तू है। सरगुण रूप की रचना तय की है सारी सृष्टि की, सब तेरी तू मेरा प्रीतम, सब तेरे हन। रचना बाहरली सृष्टि जिन्नी है रचना तय की है, इतने तू मेरा प्यारा है, मेरा प्रीतम है। प्रीतम मुन सब तेरी तू मेरा प्रीतम, मुन निसबासर रंग राव है। निसदा की अर्थ है रात, बासुर का अर्थ की है दिन। निसबासुर पाठ जिथे आवे ना इहदा अर्थ हुंदा दिन रात। कई जगह निस दिन भी आ जांदा पाठ, निस मतलब रात है, निस दा अर्थ हमेशा रात करना है। दिन तो भाव दिन, इत्थे बासुर आ गया, बासुर तो भाव दिन। जिहड़े वाहिगुरु दे प्यारे ने ना ओ दिन रात ही परमेश्वर दी प्राप्ति रूप सेजा दा आनंद माणदे रहिंदे ने। रंग राव है, ओ रत्ते रहिंदे ने परमेश्वर दे रंग विच दिन रात। ਉਹ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਲਾਪ ਰੂਪੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰਾਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो लेकर आया है आपके लिए एक सुंदर सा सवाल। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, आज अपने ही रथ पर बैठा है निराश होकर। क्यों? अपने बाणों से हवा को भी रोकने की विद्या रखने वाला सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन आखिर क्यों अपना आत्मविश्वास खो बैठा? इस पर ही करने वाले हैं आज हम विचार पुण्य दर्शन में, इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1, 19-25 सोमार्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।

करंट सिचुएशन में भी पूरी तरह रेलेवेंट होता है, कारगर होता है, सिद्ध होता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू देने गए हों, सब कुछ आता था, किंतु जैसे ही इंटरव्यू लेने वाले के सामने बैठे, आवाज ही नहीं निकली, या स्टेज पर बोलने का मौका मिला लेकिन डर के मारे हाथ कांपने लगे, किसी ने आपकी जरा सी आलोचना कर दी और आपका पूरा आत्मविश्वास खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या आत्मविश्वास केवल अच्छी अंग्रेजी बोलने से आता है? क्या महंगे कपड़े पहन लेने से इंसान कॉन्फिडेंट बन जाता है? क्या बड़ी गाड़ी और बड़ा बैंक बैलेंस ही आत्मविश्वास है? भगवत गीता कहती है नहीं। आज मोटिवेशनल स्पीकर्स यही कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, अच्छी बात है। किंतु एक प्रश्न है, अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं तो मैं किस पर विश्वास करूं? मेरे शरीर पर, मेरे पैसे पर, मेरी नौकरी पर, मेरी सुंदरता पर? क्योंकि ये सब तो एक दिन बदल जाने वाले हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। कैसे अर्जुन ने खोया अपना आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया, यूं आया।

0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: पेंजी की हाल है पेट दर्द दा?
2: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
1: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 04334654922।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। पांडव जिस युद्ध के लिए पूर्ण रूपेण तैयार थे, अर्जुन अपने बाणों से एक एक शत्रु को भेदने के लिए अति उत्साही था, किंतु युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने आत्मविश्वास को खोते ही वह अपना गांडीव धनुष छोड़कर रथ पर बैठ गया, निराश हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी मरती नहीं, समाप्त नहीं होती। एक बार सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कार लेकर आए, नई कार खरीदे, तो 2-3 महीने तक तो ऐसा लगता है कि वाह, सबसे खुश मैं ही हूं। कुछ महीनों बाद वही कार पुरानी लगने लगती है, फिर उसे नई कार चाहिए होती है, फिर बड़ा घर, बड़ी नौकरी। यानी जो कॉन्फिडेंस नई कार लेते समय था, थोड़ी देर बाद वो खत्म होने लगा। यानी हमारा आत्मविश्वास बाहर की भौतिक चीजों पर टिका है, इसीलिए वह बार बार गिर जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान समझ लेता है मैं भगवान का अंश हूं, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, उस दिन उसके अंदर एक अलग ही ताकत, अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है। फिर लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता कम होने लगती है। समझिए, हमारा आत्मविश्वास भगवान पर नहीं, दुनिया की चीजों पर टिका हुआ है। आज छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखिए। सुबह उठ गए हैं, आईने में देखिए और अपने आप से कहिए, मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
1: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Milton।